हारून लंत्रा दसम से तीसरा तरीसी द देदास देखदा का श्रीलंका बाइला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान अगत अवरणीय गायक होगे सतुटुमत नारतन में जनता और लंगाओं ने गायन शैली निशा ओ दशक गणनावक जनप्रियत्व इलिंग सिटिया बाइला संगीत नव रसयक नव शब्दक सा वेदिका

टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सतुटुम नर्तन में वेदिका सजीवीकरण गायन शैली निशा ओगे बाइला सा अनिकुद गीत लोक प्रसिद्ध नामक बहुत पत्तुना इदास नाम से हत्यावत असुअ दशके बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबू सरलत्व सतुट सा जनता समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल फाइनियस अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय राशे मतकरण अमरणीय हांडा

आयवो डेनिस जसंत तिस्तेकेसी दिदास दहाट दक्वा जीवतुन जनप्रिय गायक श्रीलंका संगीत मृदुमत सुअदिन स्वेदी स्वरेकिंग लेस जन हृदय अमरणीय गायक ओगे गायन शैली सरलत मनरम कमत हदवत सुदुम लंगावन विलासिताव किं प्रीति बुना इद्दास नमसे पना हेट दस के सिनेमा गीत जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व गत्ता ऐदो यालुवने संद तारका पाम ओबामा सेमिंग आदरे वनी गीत उगे नामे अमरणीय कला ओगे हंड्रेड तिबु मृदत्व निर्माणशीलत्व सा गीतेट गौरवे दिन गायन विलासिताव निशा ओहु विनसम कलाकार रेकुना श्रीलंका संगीतेट दीर्घकाल्य सेवे कल नियतमानी गौरवत्वेट पात्र कलाकार आयो डेनिस के गीत अदत असन विट सितट सोयक मतक सुवंदक सा सत्य संगीत रसयक लभिनवा

मिल्टन मालवाराचे श्रीलंका संगीते अमरणीय सुरक लेस सरकने ओगे मुर्दू दुख सनसीम मिश्रु गायन शैलियत हदवटत एतुलुवन सुर वीमत निसा ओ जनादरेत विशेष स्थानयक लबागत्ता हत्ता वसु दशके प्रेम गीतोल राजु लेस सलकुन ओहु संद पहान वेला ओबमा आदरे अद हेट मट हितेनवा संद तारका गीवन गीत अद जनप्रिय ओगे गायनेट तिबु सुवंद संवेदी सत्य सरल अनेक कलाकार अंगें विनाश करा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत संगीत वेदिका ओसे ओ श्रीलंका संगीत अमरणीय सटाहना तबुआ ओगे गीत अदत असन वितट सीतट मृदु सुवेक मतक सुवंदक संगीते सत्य रसयक लबेनो।

सुनील शांत दसम से पहले उपतलब दसम से असु के साधारण वेन्व के श्रीलंका संगीत पुरोगामी अतिशय गौरव पात्र संगीत अन्य सह गायक ओ श्रीलंका संगीत स्वदेशीय रसे नव सुरवीम सह निर्माणशील गिना आयक सिंगल संगीत स्वदेशीय हंडक नव मंपेतक सह सत्य रस गिना प्रमुख कलाकार ओगे गीत सरल गैंबुरु संवेदिसा श्रीलंकीय संगीते हदवतट लंगावन रसज्ञनेनवा संगीत अध्यापने गीत निर्माण सा सुरवीम तुल ओगे दायकत्व श्रीलंका संगीत इतिहासे विशाल सटाहनक कला सुनील शांत के गीत अदत असन विट श्रीलंकीय संगीते सत्य रसे निर्माणशीलत्व सा सौंदर्य तावमत जीवमानाय

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बाइला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान गत जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतटुमत नर्दनमय वेदिका व सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बाइला लोके अमरणीय नामक बहुत पत्तुना हत्या व असुव दशक बाइला संगीत नवरसज्ञना जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनिमल्ली मलमेनिके वेनी जनप्रिय बाइला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैली सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासितावकिन पिरी तिबुना उत्सव विवाह अवस्थावलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादिने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय बाइला रसे मतक्रोण अमरणीय हंडाक

प्रिंस उदय प्रियंत दसम से हत्या है उपतलवा दिदस दाते श्रीलंका विंग सदाटम विन्वग्य जनप्रिय संगीत अतिशय संवेदी मृदु हदवत अतुलन गायके कुलसे जना दरेट आदरणीय कलाकार ओगे गीतवल तिबु सेनेहास दुख मतक सुवंद सा सत्व बाय निसा ओगे हंड थाव मत जनता ओगे सित्तुल जीवमान है अणुव देदा दशके प्रेम गीतवल विशेष स्थान लबागत हो संदवतियाई मगे मनमाल्य संद तारका मले ओबमा हट दून सन्यास संद मले मगे मले वैनि गीत ओगे नामे अमरणीय कला ओगे गायन शैल्य सरल मृदु सा गीते हंगीम सुजुम प्रकाश करण विलासिता किम प्रीति बुना जीविते अभियोग अतरत ओगे संगीत जनता ओट सन्यास सोये सा मतक सुवंदक लबा दुना प्रिंस उदय प्रियंत के गीत अदत असन विट सितट मृदु सोयक सन्यासक सा अमरणीय संवेदी रसयक लेबिनो

प्रिया सूर्य सेन श्रीलंका जनप्रिय संगीत अतिशय प्रियतम गायक दशक गणनावक जन हृदय लंगा कलाकार ओगे मृदु सुवदन संवेदी हंडत सरल गीत रसिया निशा ओगे गीत अदत जनप्रियत्व अमी नोवी जीवमान पवती हत्या वसुव दशके प्रेम गीत संवेदी गीत सा जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व लबागत हो गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवत सुजम लंगावेन विलासिताव किंग प्रीतिमुन निशा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीत ओसे ओहु श्रीलंका संगीत अमरणीय सटान तबुआ प्रिया सूर्यसेन के गीत असन विट अदत सितट सोयक सिनेहासक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ